0: खुशी खजाने विद आरजे अर्शिता शशीला।
1: न्यू केळ्ता इदिरा 90.4 FM रेडियो निनादा, इदु जनमनद नाद तरंग।